आप सुन रहे हैं हिंदी फिल्मी गाने और आइए आगे के सफर में सुनते हैं सुई धागा फिल्म के चंद गाने। तो लीजिए पहला गाना, सुनते हैं पापोन की आवाज में।

जी हाँ, जिंदगी में माहौल चाहे कैसा भी हो पर होना चाहिए सब बढ़िया। आप सुन रहे थे ये गाना सुखविंदर सिंह एवं सलमान अली की आवाज में फिल्म सुई धागा से। आप हमारे साथ सुन रहे थे हिंदी फिल्मी गाने और अब से थोड़ी ही देर में आप सुन पाएंगे इदुमिस्मी श्रोताओं का समाचार।

0: श्रोताओं का कार्यक्रम ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है। अभी आप सुन पाएंगे इडुमिसमी श्रोताओं का कार्यक्रम।
1: एचा आकाशवाणी ईटानगर पुयाला पुची जासुहु इन्या मालिनी एतानिची इडुमिसमी आहोला केजी दरगालंबो इंडिया एम मे आईमुगा अंजीब अलुगने तेबने जम्बूगा मे तंद्रप्र अथुजीदाने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी में उन्ना आकाशवाणी वाची मन की बात प्रोग्राम माने नुआची आउ माजीगा एकोब अतिकाचीगा लाहेगा महो लगाने अली एगे मने अतिकाची आयु ओलम्बर में आयुगा अंजी दु हामी इगा बहुचिमा उजीदा लगादा आहोगा केबाने आ रूमी आयु उचिपो जम्बो अरुंदगामा अली जम्बेगेने एगोखुगादाने प्राइम मिनिस्टर में नरगाने अतिकाची अली रुगामी आयुमा नशा अचिया में आरोजीना लगादा आहोगा इंडिया माचे मुमे मिगा अथोयोगिमी इंडिया गाने अरुंदा अंजी दोने हाथुमदो आयोजे नाने प्राइम मिनिस्टर में लगादा आहोगा यूनियन फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री दोने डायरिंग मिनिस्ट्री कोकोचे फिशरीज डिपार्टमेंट में अना लक्षदीप माजी आगाति आतिकोने आंगा आयोजिपुआ प्रोग्राम आखगा माने वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर सी पी राधाकृष्णन में मै तो आंगा आयो पुजी प्लान आयोदा लाहगा आ प्रोग्राम मा यूनियन फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री डायरिंग दोने पंचायती राज मिनिस्टर राजीव रंजन सिंह में किम्बे मा याको लम्ब्रो लाफागे आंगनवाखाया इमुतांदो इगाओदा लाहोगा ईटानगर स्टेट बैंकर हॉल मने कारुची दे चिपुआ प्रोग्राम अखगा चाहे बुनी दोबादा आहोगा कारु आतुया दोने कारु हिमु हामु आखाया लाफागे हयो तातिका अब्रम छि मान एचामा इमो लम्ब्रो मे आ प्रोग्राम मा गिगा बमा हो आ प्रोग्राम मा गिगा बा इमो अनब्रो मे अरुणाचल प्रदेश माजी हलोके कारुची तेमु मादा लाहगा इहुमे कारु अतुए मा काजे एगाजे अतिकौता काजे मामे अथुपुए काजे खा मा अथुगला लापगे एकोबुखो लाकेदगा चिदा आहोगा राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में कारु अतुया लम्बोगो आरोगागने अली प्रोग्राम अखनेगा चाहे पाबाबुदाने अरुणाचल प्रदेश टूरिज्म मिनिस्टर पी डी सोना में लगाने आ मने करू अतुता ची आयो में योगा औषधा लयबदा आहोगा बुरु में नही अतरटाबा नेपाल मा इंडिया में आरोया होलोकेटन अंजिया है पया काठमांडू गीतराम बदाने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर में ला होगाने आ मै अब इंडिया में मगर हूँ यूटन आया अंजी नेपाल मा गीतगा लगाता आहोगा आम हो इंडिया में एचाह माओ इंडिया मा चिमु नेपाल माने गिगाने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री मा चे ला होगा रणदीप जसवाल में ला होगाने इंडिया मा चे माओगा इहु मा इमु इचिब गाता बदा ला होगा अब नंबर तो इहु बजना सुरमी माने दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम मने या को नंबर के बने टी ट्वेंटी एशिया क्रिकेट कप अखपगा बोमा एतने है इंडिया ने थाईलैंड में एमगाई बोदा ला होगा लिवाचा एमगा बसोमा अनया इंडिया में टी ट्वेंटी क्रिकेट वर्ल्ड कप मा है ग्रुप राउंड मा महो होया लिगा ना बचिता लगा एतनसी इडमिसमी आहो अलीमाओ दुबई
2: एचा आकाशवाणी ईटानगर नाले ईद मिशमी प्रोग्राम मा एचमता आशे अहोसो खियामा हो एतनी हेंदो मेदे को मेजो ची चाशे ची अहुजी

आप श्रोता सुन रहे थे दुमिस्मी श्रोताओं का समाचार। आप बने हुए हैं हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 MHz में। श्रोताओं, अगर आप इदुमिस्मी श्रोताओं का पूरा कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो ट्यून कर सकते हैं आकाशवाणी ईटानगर के मीडियम वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज पर। और आइए अब सुनते हैं हिंदी फिल्मी गाने। इस सफर में आइए पहला गाना सुनते हैं फिल्म तमाशा से मोहित चौहान की आवाज में।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

अलका याग्निक एवं उदित नारायण के आवाज में आप सुन रहे हैं तेरे नाम फिल्म का ये गाना। श्रोता दोस्तों, आप सुन रहे थे हिंदी फिल्मी गाने, ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ से। हमारी दूसरी प्रसारण सभा के प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में आज हमारे साथ थे प्रसारण अधिकारी गोपाल राय, तकनीकी अभियंता एचएम भूषण और स्टूडियो तथा एचपीटी में मौजूद सभी सहकर्मी। और अब से थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे तांगसा श्रोताओं का समाचार, उसके तुरंत बाद आप सुन पाएंगे प्रोग्राम गुड इवनिंग ईटानगर आरजे साजिद के साथ। तो मुझे आपकी रेडियो साथी कविता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

माना कि तेरे दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तू मेरा शौक देख, मेरा इंतजार देख। हमारे प्यारे श्रोता दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आकाशवाणी ईटानगर केंद्र के अरुण FM 103.1 MHz पे। अभी आप सुन रहे थे तांगसा श्रोताओं का समाचार। इससे पहले आप बने हुए थे आपकी अपनी आरजे कविता के साथ, और अब आपके सफर में जुड़ चुके हैं आपके रेडियो साथी साचे।

तो चलिए बिना वक्त गवाए आपको ले चलते हैं कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर में। दोस्तों गुड इवनिंग ईटानगर में आज हम बात करेंगे शाम को टहलने के फायदे के बारे में। दोस्तों शाम को टहलने से आपकी आंतरिक घड़ी को नियमित करके आपकी नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है। दिन के समय प्राकृतिक प्रकाश के संपर्क में आने से शरीर शाम को मेलाटोनिन का उत्पादन करता है जो मस्तिष्क को सोने का संकेत देता है। शाम को टहलने से आप अपने शरीर की प्राकृतिक लय को और मजबूत कर सकते हैं और अधिक आरामदायक नींद ले सकते हैं। दोस्तों पैदल चलना तनाव कम करने का एक बेहतरीन तरीका है और शाम के समय की सैर विशेष रूप से प्रभावी होती है। काम या स्कूल में लंबे दिन के बाद बाहर टहलने से आपको तनाव मुक्त होने और मन को शांत करने में मदद मिलती है। यह न केवल दिन भर के तनाव को पीछे छोड़ने का अवसर देता है बल्कि यह आपको भविष्य के तनावों से बेहतर ढंग से निपटने के लिए लचीलापन विकसित करने में भी मदद कर सकता है।

जी हाँ दोस्तों, आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर केंद्र के अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पे, और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर, जहां हम बात कर रहे हैं शाम को टहलने के फायदे के बारे में। दोस्तों, नियमित व्यायाम से मूड बेहतर होता है और अवसाद व चिंता के लक्षण कम होते हैं। शाम को टहलने से ताजी हवा और वातावरण में बदलाव आता है, जिससे आप बेहतर महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा टहलने से आपको आराम मिलता है और आप सकारात्मक सोच डेवलप कर सकते हैं, जिससे जीवन के प्रति आपका समग्र दृष्टिकोण बेहतर होता है। दोस्तों, पैदल चलना एक कम ऊर्जा खपत वाला एक्सरसाइज है, जो रक्तचाप को कम करने, हृदय को मजबूत बनाने और रक्त प्रवाह में सुधार करके हृदय स्वास्थ्य को बेहतर बना सकता है। शाम के समय थोड़ी देर पैदल चलने से भी कई फायदे होते हैं, जैसे सूजन कम होना और रक्त शर्करा का लेवल कम होना। दोस्तों, जब आपके पास ऊर्जा की कमी होती है, तब टहलना शायद अजीब लगे, लेकिन शोध से पता चलता है कि व्यायाम वास्तव में ऊर्जा स्तर को बढ़ा सकता है। शाम को टहलना, थोड़ा अतिरिक्त व्यायाम पाने और दिन भर डेस्क पर या क्लास में बैठे रहने के बाद शरीर को तरोताजा करने का एक शानदार तरीका है।

दोस्तों, पैदल चलने से संज्ञात्मक कार्य क्षमता और स्मृति में सुधार होता है, यहाँ तक कि बूढ़े लोगों में भी। शाम के समय टहलने से मानसिक तनाव से कुछ समय के लिए राहत मिलती है और मस्तिष्क में रक्त प्रवाह बढ़ता है, जिससे आपकी चेतना जागृत

0: जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप तादुयाजो से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में कहा कि देशभर में नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान तेजी से गति पकड़ रहा है। नेपाल बाढ़ में मृतकों की संख्या 734 हुई, लगभग 2500 लोग अभी भी लापता। भारत ने 11 टन राहत सामग्री नेपाल भेजी। खेल मंत्री मानसिक मांडविया ने नई दिल्ली में फिट इंडिया संडे जोन साइकिल के 88वें संस्करण में हिस्सा लिया। मिजोरम के फुटबॉल खिलाड़ी लालियन ज्वाला चांगते को वर्ष 2026 का सर्वश्रेष्ठ भारतीय फुटबॉलर चुना गया। भारत आज महिला क्रिकेट में थाईलैंड के साथ T20 एशिया कप अभियान की शुरुआत करेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि नशा मुक्त युवा और नशा मुक्त भारत केवल एक औपचारिकता नहीं है, क्योंकि ये बहुत सारे लोग और विशेषकर युवा बड़ी संख्या में इसका हिस्सा बन रहे हैं। ये भारत के युवाओं के स्वास्थ्य, खुशी और उज्ज्वल

भविष्य के लिए सामूहिक संकल्प है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नशे की लत से केवल एक व्यक्ति पर ही दुष्प्रभाव नहीं पड़ता बल्कि पूरे परिवार और समाज को इसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं। उन्होंने नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने और नशे की लत से जूझ रहे लोगों की मदद के लिए आगे आने वाले लोगों की सराहना की। श्री मोदी ने लोगों से नशा मुक्त भारत के लिए प्रभावशाली नारा तैयार करने और युवा संगीतकारों से ऐसे गीत बनाने को कहा जो नशा मुक्त जीवन का संदेश दे। उन्होंने कहा कि देश में उत्कृष्ट कंटेंट क्रिएटर्स की कोई कमी नहीं है। श्री मोदी ने उनसे इस प्रयास में विभिन्न भाषाओं में कंटेंट तैयार करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि वे सामाजिक परिवर्तन के लिए अपनी रचनात्मकता को माध्यम के रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं। मध्य नेपाल में अचानक आई भीषण बाढ़ से मरने वालों की संख्या आज बढ़कर 734 हो गई है। शव बरामद किए जाने का सिलसिला अभी भी जारी है। आपदा के बाद से लगभग 2500 लोग अभी भी लापता है। आपदा के पांचवें दिन भी बचावकर्मी लापता लोगों की तलाश और फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए तेजी से काम कर रहे हैं और सभी 8 प्रभावित जिलों से शव बरामद किए गए हैं। नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्था स्थापन प्राधिकरण NDRRMA ने बताया कि अब तक चितवन से 259, नवलपारी से पूर्व से 184, नवलपारसी पश्चिम से 82 और गोरखा जिले से 58 शव बरामद किए गए हैं। इसी तरह नुवाकोट से 52, ढांडिंग से 50, तनहू से 36 और रसुआ से 13 शव बरामद किए गए हैं। प्राधिकरण ने बताया कि 85 सुरक्षाकर्मियों और 320 विदेशियों सहित 2498 लोग लापता हैं। बचाव दल ने अब तक प्रभावित जिलों से 8186 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है। इनमें 227 विदेशी नागरिक शामिल हैं। नेपाल सरकार ने भोटेकोशी नदी में बाढ़ के लिए नया अलर्ट जारी किया है और नदी किनारे रहने वाले निवासियों से सतर्क रहने को कहा है। NDRRMA ने नदी में बाढ़ का प्रभाव बढ़ने की सूचना दी है। रसुआ जिला प्रशासन ने रसुआ, नुवाकोट और दांडिंग जिलों में बोटेकोसी नदी के आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। नेपाल सीमा के पास तिब्बत में आई अचानक बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। चीनी अधिकारियों के अनुसार 546 लोग अब भी लापता है, जिनमें कई भारतीय भी शामिल है। 26 अगस्त को आई भीषण बाढ़ ने ग्यूंगरोंग नेपाल सीमा पर अवर्जन बंदरगाह को अपनी चपेट में ले लिया था। उस समय बड़ी संख्या में लोग तिब्बत में प्रवेश करने या वहां से बाहर निकलने के लिए दोनों ओर इंतजार कर रहे थे। तिब्बत के ग्योरोंग काउंटी में राहत और बचाव अभियान जारी है। चीनी अधिकारियों के अनुसार लापता लोगों में 23 देशों के 261 विदेशी नागरिक भी शामिल है। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल को 68 टन राहत सामग्री भेजी है और खोज तथा बचाव कार्यों में सहायता के लिए तकनीकी दल, फोरेंसिक विशेषज्ञ और उपकरण भेजे हैं। विदेश मंत्रालय ने एक पोस्ट में बताया कि 11 टन राहत सामग्री लेकर चौथा विमान आज नेपाल पहुंचा। काठमांडू में भारतीय दूतावास ने कल एक बयान में कहा कि भारत ने नुवाकोट जिले के बाढ़ प्रभावित त्रिशूली क्षेत्र में पनबिजली सुरंगों में खोज और बचाव कार्यों के लिए सुरंग विशेषज्ञों सहित एक विशेष तकनीकी दल और उपकरण भेजे हैं। बुधवार को आई विनाशकारी बाढ़ के बाद पनबिजली सुरंगों में श्रमिकों के फंसे होने की आशंका है। बचाव कार्य शुरू करने से पहले दल के चिले में और लॉन्गटांग क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण भी किया गया। दूतावास ने कहा कि भारत ने कंबल, स्लीपिंग बैग, तिरपाल, प्लास्टिक शीट और स्वच्छता किट सहित राहत सामग्री के साथ साथ फॉरेंसिक विशेषज्ञ और DNA विश्लेषण के लिए उपकरण भी भेजे हैं। इसके अलावा 230 फुट लंबे एक लेन वाले मॉड्यूलर स्टील पुल के लिए उपकरण ले जा रहे हैं। 16 ट्रक

0: स्थापित हो गया है। स्थानीय सरकारी सूत्रों के अनुसार पिछले दो दिनों में 598 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल में दाखिल हुए हैं, वहीं चीन से अभी तक रवाना नहीं हुए। 900 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और पेचिंग स्थित भारतीय दूतावास उनसे सीधे या स्थानीय सरकार के माध्यम से संपर्क में है। मंत्रालय ने कहा कि भारत सरकार बाढ़ से प्रभावित लोगों के शीघ्र बचाव और राहत कार्यों के लिए नेपाली और चीनी अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रही है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस विमान से नेपाल में चल रहे बचाव और राहत कार्यों में सहायता के लिए आवश्यक सामग्री और तकनीकी सहायता लाई गई। इससे पहले भारत ने 3 उड़ानों में 57 टन से अधिक आपातकालीन राहत सामग्री भेजी थी। नेपाल तिब्बत सीमा के पास हिमखंड के ढहने से हिमस्खलन हुआ, जिससे पानी, कीचड़ और मलबा तेजी से बह निकला। बुधवार को इसने कई कस्बों और गांवों को तबाह कर दिया, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाया और मध्य नेपाल में पनबिजली संयंत्रों को बहा ले गया। मत्स्य विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कल लक्षद्वीप के अगती में आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस दौरान उपराष्ट्रपति मिशन रंगीन मछली 2031 के रणनीतिक कार्य योजना का शुभारंभ करेंगे। ये योजना सजावटी मत्स्य पालन के विकास को बढ़ावा देने पर केन्द्रित है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में आयोजित फिट इंडिया संडे जोन साइकिल के 88वें संस्करण में भाग लिया। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित यह कार्यक्रम ब्रिक्स के सहयोग से राष्ट्रीय खेल दिवस का विशेष संस्करण था। संवाददाताओं से बातचीत में डॉ मांडविया ने कहा कि साइकिल चलाना नागरिकों के बीच लोकप्रिय हो गया है। साइकिल चलाने के महत्व का उल्लेख करते हुए डॉ मांडविया ने कहा कि यह व्यायाम का एक उत्कृष्ट रूप है। यह प्रदूषण मुक्त वातावरण के लिए महत्वपूर्ण है और यातायात जाम की समस्या का एक प्रभावी समाधान है। डॉ मांडविया ने युवाओं के स्वस्थ और तंदुरुस्त रहने के लिए प्रतिदिन कम से कम एक घंटा खेल और शारीरिक गतिविधियों के लिए समर्पित करने का आग्रह किया। इसी बीच भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने कहा कि फिट इंडिया पहले देश को अधिक स्वस्थ, मजबूत और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनने की दिशा में अग्रसर करेगी। उन्होंने युवाओं से भी आंदोलन में भाग लेने का आह्वान किया। मिजोरम के फुटबॉल खिलाड़ी लालियन ज्वाला चांगते को वर्ष 2026 का सर्वश्रेष्ठ भारतीय फुटबॉलर चुना गया है। 29 वर्षीय चांगते हाल ही में मुंबई फुटबॉल क्लब से मोहन बागान में शामिल हुए हैं। उन्होंने कल रात भारतीय फुटबॉल के दिग्गज भाईचुंग भूटिया से यह सम्मान ग्रहण किया। फुटबॉल प्लेयर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित ये पुरस्कार साथ ही खिलाड़ियों के वोटों के आधार पर तय किया जाता है। चांगते ने इससे पहले 2023-24 सीजन के लिए भी ये सम्मान जीता था। मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल लू होमा ने चांगते को बधाई दी। वहीं मिजोरम फुटबॉल एसोसिएशन ने इस उपलब्धि के गौरवपूर्ण क्षण बताया और कहा कि ये मिजो फुटबॉलर की अगली पीढ़ी को प्रेरित करेगा। एशिया कप T20 क्रिकेट में आज भारतीय महिला टीम का सामना थाईलैंड से होगा। दुबई में ये मैच भारतीय समय के अनुसार मैच रात 8:30 बजे से शुरू होगा। कप्तान हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारत प्रतियोगिता में अपने अभियान का शुरुआत करेगा। स्मृति मंदना उपकप्तान होगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय प्रेम शर्मा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन हिज मन की बात प्रोग्राम हैज सेड दैट द नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत कैंपेन इज गेनिंग मोमेंटम रैपिडली अक्रॉस द कंट्री। Mr. Modi expressed happiness that the campaign with the goal for drug-free youth and a drug-free India is not merely a formality, as many people, especially the youth, are joining it in large numbers. He said this is the collective resolve for the health, happiness and bright future of India's youth. PM commended those who raise awareness against drugs and step forward to help individuals struggling with addiction. PM Modi asked people to come up with a powerful slogan for a drug-free India and young musicians to create songs that convey the message of a drug-free life. PM also highlighted about being vocal for local as it is the vision towards the path of India becoming self-reliant. Whereas Prime Minister Narendra Modi has been conferred with Uzbekistan's Supreme State Award, the Order of Oli Darazali Dostalik by President Shavkat Mirziyoyev.

अगत्ती हा को वाइस प्रेसिडेंट में मिशन रंगीन मछली 2031 ऑर्नामेंटेड फिशरी डेवलपमेंट एक्शन प्लान पे रिलीज हुए मिंगा में चोटे रखी अपे डंके मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डायरिंग व फिशरी डिपार्टमेंट में आउटरीच प्रोग्राम हुआ के अरे प्रोग्राम को यूनियन फिशरी मिनिस्टर ले अहन हूं छिट फैन हे मिन होक मिन अरे ले को दिया को दलाओ ngak pam te le ngak lue te adiko fishery department government of India le Lakshadweep government wa min hok min ngame jo chutet eki. Kiyak lam kram our journey tourism and culture experience tour ja erok program dang tak pe meja state banquet hall ko twin seat wa ngame chutet eki. Are program ko notice state asset wa cha te no meja minyan kwen wa. होमस्टे ले टूरिज्म सोला ते हेया ngale अरुणाचल वा छीजे गा थेनंग नॉर्थ ईस्ट मिन्यान ख्वा खमिन पे जथुक रंग फोंगसित वा टूरिज्म मिनिस्टर पीडी सोना में राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ले टूरिज्म तंग में कामसन मोहे के अरे नॉर्थ ईस्ट मिन्यान तुंगनंग जतमिन थुक रंगा ngame ngake अरे प्रोग्राम पे राजीव गांधी यूनिवर्सिटी वा मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ले सेंटर फॉर कल्चर रिसर्च एंड डॉक्यूमेंटेशन में हुन वा मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज वा इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में चोसुला में आरो चोटेट एकी इंडिया में नेपाल जुलुम कोखे सोकरंग चोसोकरंग अलमली समक डबली रंग पुकरेन में नेपाल गवर्नमेंट नंग चोकोवंती छी हजार थे केजीनो में जा रंग ngame चोथोको एही एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर में अमा कोमिन अरंग रंग हो हे हुन जो हाजेट रो बंगा नो में जा अलुम अलमली समक लामेट वंती ngame जो चोथोको एही एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री स्पोक पर्सन रणधीर जायसवाल में डंके चाथे वाई एसेट रंग इंडियन मिन्यन ला पेसीटी ngame चोथोको एही ना पेन व दुद बे जाको जो लुम ता को वा ngale amako lechu ja min dang dangwa ro bunga rang india mi nyen dam nang min lachu ja min ti ngame athui to ko ademin chani ro ngit wa bunga indian mi nyen ma chu lam ngale ahen diak nang song te cha the ro ni wa isat indian mi nyen jo ma chu lam ngame chu tho ko ehi theja india le thailand women team abang tu luamin अडबंग टू लोमिना टी ट्वेंटी एशिया कप को दुबई व इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम को रंगपन वायनसठ खाठेपुमे इंडिया में डंके अरे कप लोम लोम ता को डब बंगा को डब रम रंग पे जी एन रेके ngame चुटे रेकी थजा नंगनोक्टे खोबट पे अटो को थोने के अदे नंगनोक्टे से प्रोग्राम को अबंग को चा नियम अबोवा रुन से चुटेडन

जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे नुक्ते श्रोताओं का समाचार। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव का।

जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव, ये आकाशवाणी टनगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ से। दोस्तों प्रस्तुत है कार्यक्रम शाम की महफिल। दोस्तों कैसा रहा आज का संडे? किसी ने तो बिस्तर पर लेट कर पूरा दिन निकाल दिया होगा, तो किसी ने सोचा होगा कि आज कुछ ऑफिस या पढ़ाई का बैकलॉग खत्म करूंगा। लेकिन रात तक फोन खोलकर बस रील को स्क्रॉल ही होती होगी। दोस्तों अभी वो उदासी वाला संडे हैंगओवर भुलाने का वक्त है, क्योंकि अब प्रस्तुत है कार्यक्रम शाम की महफिल, जहां हम सुनेंगे ढेर सारी अच्छी गीतें।

दोस्तों, कुछ गाने सिर्फ सुनने के लिए नहीं होते हैं, कुछ गाने एक एहसास होते हैं, एक पुराना जख्म या फिर एक अधूरी सी कहानी। और जब बात हो एक ऐसी मोहब्बत की जहां दीवानगी की सारी हदें पार हो चुकी हो, वहां शब्द कम पड़ जाते हैं और शुरू होती है सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक। दोस्तों, याद होगा आपको कि 2008 की फिल्म रेस और उसका वो आइकॉनिक ट्रैक जो आज भी दिल को चीर कर रख देता है। आतिफ असलम की वो रूहानी आवाज, श्रेया घोषाल की प्यारी सी गुनगुनाहट और प्रीतम का वो जादू जो सीधा रूह में उतर जाए। पेश है ये गीत।

दोस्तों, शाम की तन्हाइयाँ जब गहराने लगती हैं और दिल किसी पुराने कोने में थोड़ा सा रुक जाता है, तो वही पुराने किस्से, वही अनसुनी बातें फिर से दस्तक देने लगती हैं। दोस्तों, आपने कभी महसूस किया है कुछ गाने सिर्फ सुने नहीं जाते, वो आपके अंदर कहीं उतर जाते हैं, जैसे वक्त वही थम सा गया हो जहां अपने किसी को अलविदा कहा हो। दोस्तों, ये जो आवाज है रेखा भारद्वाज की, ये सीधे रूह को जाती है। ऐसा लगता है जैसे ये कोई गाना नहीं, किसी की अधूरी डायरी के पन्ने हैं जो हवा में उड़ रहे हों। कहते हैं ना कि फिर ले आया दिल मजबूर क्या कीजिए, राह मोहब्बत में है फितूर क्या कीजिए।

जी हाँ दोस्तों, आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर केंद्र के अरुण FM 103.1 MHz पे। छौते हैं दिल से दिल की बात, और मैं हूँ आपका दोस्त RJS साजिद। दोस्तों, लाइफ कितनी भी बिजी हो, कभी कभी बस एक मिनट के लिए रुककर हर किसी को ये कहने का दिल करता है ना कि यार बस थोड़ी देर के लिए सब कुछ छोड़कर यहाँ आ जा। कोई शिकायत नहीं, कोई सवाल नहीं, बस तू और मैं। तो बस आपके इसी रोमांटिक और सोलफुल मूड को और ज्यादा डीप करने के लिए पेश है ये गीत ओ ना। वही मैजिकल ट्रैक ओ ना, एक ऐसी धुन जो आपको अपने किसी खास के और करीब ले आएगी।

जी हाँ दोस्तों, भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शाम की महफिल। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है। दोस्तों, प्रस्तुत है कार्यक्रम स्पेशल हिंदी फिल्मी गीतों का।

जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे आदेश श्रोताओं का समाचार। ये आकाशवाणी ईटानगर का रून एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है। दोस्तों अब प्रस्तुत है कार्यक्रम आज के कलाकार। आज के कलाकार में आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के जुबली हीरो राजेंद्र कुमार के बारे में। दोस्तों राजेंद्र कुमार का जन्म 20 जुलाई 1929 को सियालकोट पंजाब में हुआ। पंजाब में यानी कि जब भारत का विभाजन हुआ तो सियालकोट पाकिस्तान के अंतर्गत हो गया। उस वक्त राजेंद्र कुमार के दादाजी मिलिट्री के कॉन्ट्रैक्टर हुआ करते थे और उनके पिताजी का टेक्सटाइल का बिजनेस था। लेकिन भारत के विभाजन के बाद स्थिति ऐसी बनी कि पूरा परिवार सब कुछ छोड़ छाड़ कर दिल्ली आ गया। राजेंद्र कुमार के नाम के आगे लगता है डॉक्टर राजेंद्र कुमार। दोस्तों राजेंद्र कुमार जी का पूरा नाम राजेंद्र कुमार तुली है। राजेंद्र कुमार जी ने पीएचडी की थी। राजेंद्र कुमार जी फिल्मों में काम करने के बड़े शौकीन थे। दोस्तों राजेंद्र कुमार को फिल्मों में काम करने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा था। वे हीरो बनने का ख्वाब लिए जिस वक्त मुंबई आए थे उस समय उनकी जेब में सिर्फ 50 रुपए थे जो उन्हें पिता से मिली घड़ी को बेच कर मिले थे। गीतकार राजेंद्र कृष्ण की मदद से उनको 150 रुपए की सैलरी पर डायरेक्टर H.S. रवैल के असिस्टेंट के तौर पर काम मिला। 1950 में आई फिल्म जोगन में राजेंद्र कुमार को काम करने का मौका मिला। इस फिल्म के साथ दिलीप कुमार लीड रोल में थे। 1950 से 1957 तक राजेंद्र कुमार

कुमार फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। 1957 में आई फिल्म मदर इंडिया में छोटे से रोल के बावजूद उन्हें पसंद किया गया। वहीं 1959 में आई फिल्म गूंज उठी शहनाई बतौर लीड एक्टर राजेंद्र कुमार की पहले हिट फिल्म साबित हुई थी। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।

जी हाँ दोस्तों, आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर केंद्र के अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पे। दोस्तों, राजेंद्र कुमार हिंदी सिनेमा के उन चुनिंदा अभिनेताओं में शुमार थे जिनकी

कई फिल्में सिनेमाघरों में सिल्वर जुबली साबित हुई थी। अपने फिल्मी करियर में उन्होंने एक से बढ़कर एक मूवी के जरिए दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया था। उनमें से एक फिल्म के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसे 61 साल पहले रिलीज किया गया। राजेंद्र कुमार की वह फिल्म प्लैटिनम जुबली साबित हुई थी। 70 हफ्ता से ज्यादा समय तक सिनेमाघरों में चलती रही। दोस्तों, आपको बता दें कि अपने दौर के दिग्गज अभिनेताओं के तौर पर राजेंद्र कुमार को आज भी याद किया जाता है। बेशक वह हमारे बीच में मौजूद नहीं है, लेकिन करियर में दी गई यादगार फिल्मों के जरिए वह फैंस के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। राजेंद्र साहब की कल्ट मूवीज के बारे में जिक्र किया जाए तो उसमें आरजू का नाम शामिल है।

103.1 MHz पे और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज के कलाकार, जहां हम बात कर रहे हैं अभिनेता राजेंद्र कुमार के बारे में। दोस्तों, इस फिल्म को साल 1965 में सिनेमा घरों में रिलीज किया गया था। राजेंद्र कुमार के साथ साथ फिल्म में अभिनेत्री साधना शिवदासनानी, फिरोज खां, नाजिमा और नाजिर हुसैन जैसे कई कलाकारों में अहम भूमिका को अदा किया था। आरजू का डायरेक्शन रामायण टीवी शो बनाने वाले रामानंद सागर ने किया था। दोस्तों, आईएमबीडी के रिपोर्ट्स के अनुसार आलम यह रहा था कि राजेंद्र कुमार स्टार थिएटर में करीब 75 हफ्तों तक यानी के 525 दिनों तक चली थी और प्लैटिनम जुबली साबित हुई। उनकी इस 61 साल पुरानी मूवी का रिकॉर्ड आज भी कायम है और शोले सहित कुछ ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर को छोड़ दिया जाए तो कोई भी अन्य मूवी ऐसा कारनामा करने में नाकाम रही। इतना ही नहीं, आरजू साल की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में भी शुमार रही थी।

जी हाँ दोस्तों, आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर केंद्र के अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पे। दोस्तों, राजेंद्र कुमार जी को मौका मिला महबूब खान के फिल्म में काम का, जिसका नाम था मदर इंडिया, जो साल 1957 में रिलीज हुई। फिर राजेंद्र कुमार जी ने नरगिश के बेटे का रोल किया था और साथ में थे सुनील दत्त, जिनके भाई के रूप में नजर आए थे। लेकिन अभी तक भी राजेंद्र कुमार जी को कोई लीड हीरो का रोल नहीं मिला, लेकिन यह वक्त भी नजदीक आ चुका था। इनको एक फिल्म में लीड हीरो का रोल मिल गया था। इस फिल्म का नाम था गूंज उठा शहनाई, जो 1957 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को लेकर एक जबरदस्त किस्सा भी है। जब इस फिल्म का प्रीमियर था तो इस फिल्म को देखने के लिए मशहूर शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्ला खान आए थे। बिस्मिल्ला खान जी ने जब इस फिल्म को देखा और जब फिल्म देखकर बाहर निकले तो राजेंद्र कुमार जी ने बिस्मिल्ला खान जी से पूछा कि साहब, आपको ये फिल्म कैसी लगी। बिस्मिल्ला खान जी ने कहा था कि फिल्म बहुत अच्छी थी। उसके बाद राजेंद्र कुमार ने पूछा कि मेरी एक्टिंग कैसी लगी, तो इसके जवाब में बिस्मिल्ला खान ने कहा, आप तो इस फिल्म में थे ही नहीं, इस फिल्म में तो मैं अपने आप को ही पूरे फिल्म को देख रहा था। कमाल की अपने एक्टिंग की है आपने, मुझे लगा कि जैसे मैं ही थिएटर हूं और मैं ही अभिनय कर रहा हूं और आपको देख रहा हूं। राजेंद्र कुमार जी के लिए यह बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था। जब राजेंद्र जी ने फिल्म मेरे महबूब में अनवर का किरदार निभाया तो बहुत से मुस्लिम समुदाय के लोगों को लगा था कि राजेंद्र कुमार जी मुस्लिम है। राजेंद्र कुमार तो बस फिल्म नाम है। इस फिल्म के गाने के बाद राजेंद्र कुमार जी के घर बहुत से पत्र आने लगे और पूछने लगे कि जनाब, राजेंद्र कुमार तो आप किसी फिल्मी नाम है, आप अपना असली नाम तो बताइए, जैसे यूसुफ खान साहब हैं दिलीप कुमार, वैसे आपका असली नाम क्या है।

जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज के कलाकार। अभी से कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे निशी श्रोताओं का समाचार। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz है।

जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हिंदी गीतों का। ये आकाशवाणी टनगर का अरुण FM 103.1 MHz से चाहती है दिल से दिल की बात। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम वुमेन एंड फैमिली वेलफेयर का।

हो गया, मर गया, क्योंकि उसको ऑक्सीजन जो है प्रॉपर सप्लाई नहीं मिलता है, तो उसका वजह से जो है बच्चा जो है अंदर में खराब हो गया। इस तरीके से देखने को मिलता है। और या तो स्मॉल फॉर जेस्टेशन, जैसे कि उसका ग्रोथ जो सही नहीं है, जैसे एक लेवल का हिसाब से, जैसे कितना मंथ्स हो गया, 7 मंथ्स 8 मंथ्स 9 मंथ्स में बेबी का सर्टन वेट होना चाहिए, तो उस वेट कैटेगरी में जो है बेबी जो नहीं पहुंच पाता है, तो उसका वजह से उसको स्मॉल फॉर जेस्टेशन कहता है, तो उससे भी सफर कर सकता है बेबी। और अगर कोई बेबी ऐसा है कि स्मॉल फॉर जेस्टेशन है, छोटा है, साइज में कमजोर है, तो डेफिनेटली वो बहुत सारे जन्म होने के बाद भी बच्चा अगर जिंदा भी रहता है तो भी वो बच्चा जो है मोर प्रोन टू इन्फेक्शन, क्योंकि शरीर में खून की स्तर लेवल जो है कम है, हीमोग्लोबिन की लेवल कम

0: में, तो उसमें बच्चा जो है स्ट्रेस को, लाइफ का स्ट्रेस को बेयर नहीं कर पाता है और उसका इम्यून सिस्टम भी कमजोर हो जाता है। तो इसीलिए कोई छोटा मोटा बीमारी जो है उसको हर समय में जकड़ लेता है, तो पेरेंट्स को हर समय अस्पताल के दरवाजे को खटखटाना पड़ सकता है। और उसमें फैमिली का इकोनॉमी और टाइम, बहुत सारा चीजें प्रेशर आ जाता है फैमिली को उस बच्चे को संभालने में।
1: जी, तो माल न्यूट्रिशन की शिकार भी
0: हाँ,
1: हो जाते
0: सही
1: हैं।
0: सही है।
1: जी, तो जैसे कि आपने बताया था कि प्रेग्नेंट कंसीव करते ही किसी लेडी को रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए, तो ये रजिस्ट्रेशन कहाँ करवाए? क्या सभी हॉस्पिटल्स में, इंक्लूडिंग प्राइवेट आजकल, क्योंकि ज्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल, तो वहां पे भी ये फैसिलिटीज है या फिर सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर्स में ही है?
0: रजिस्ट्रेशन देखिए, अरुणाचल में देखा जाए तो हमारा तो ऑलमोस्ट 90% जो है गवर्नमेंट रन हॉस्पिटल्स हैं। ये हम प्राइवेट क्लिनिक बहुत कम जगह में देखने को मिलता है। प्राइवेट हॉस्पिटल सिर्फ मे बी कैपिटल कॉम्प्लेक्स में देखने को मिलता है, लेकिन बाकी सारे जगह में प्राइवेट सेटअप है ही नहीं, तो हमें गवर्नमेंट सेटअप ही है। और कोई भी गवर्नमेंट सेटअप, इवन सब सेंटर लेवल पे भी जाए तो रजिस्ट्रेशन वहां पे करने का फैसिलिटीज अवेलेबल है।
1: जी, और जो आयरन की टेबलेट्स देती हैं वो भी
0: हाँ,
1: फ्री?
0: वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, 100 टैबलेट्स पर प्रेगनेंसी, वो भी अवेलेबल।
1: जी, उसके बाद किस तरह का डाइट लेना चाहिए किसी प्रेग्नेंट लेडी को, खासतौर पे जो एनीमिक है उसे कंट्रोल करने के लिए, आयरन
0: हाँ,
1: की किस तरह की
0: अगर
1: चीजें?
0: अगर कोई पेशेंट, कोई महिला जो प्रेग्नेंट लेडी है, उसको पाया जाता है कि उसको एनीमिया है, तो उसको 100 टैबलेट्स आयरन से ही काफी नहीं है। उसको जो है ज्यादा जो आयरन की गोली है उसको लेना जरूरी है। और उसमें अलग अलग फैसिलिटीज जैसे है कि अगर बहुत ही सिवियर एनीमिया है, बहुत ही ज्यादा ही उसका खून जो कम है, तो खून देने की जरूरत भी पड़ सकता है। और अगर ज्यादा इतना भी एनीमिक नहीं है, मॉडरेट टाइप का एनीमिक है या माइल्ड एनीमिया है, तो उनको जो है 100 टैबलेट सिर्फ आयरन नहीं देके उसको ज्यादा डोजेस जो है इंक्रीज करना है। और अगर किसी महिला को ऐसा है कि आयरन की गोली नहीं खा पाते, क्योंकि आयरन से भी कई लोगों को साइड इफेक्ट्स बहुत होता है, जैसे कॉन्स्टिपेशन होता है, तो अगर वो बर्दाश्त नहीं कर पाते तो उनको इंजेक्शंस लेने का भी फैसिलिटीज अवेलेबल है, वो भी वो ले सकती है। और इंजेक्शंस में फायदा ये है कि उनको एक या दो बार ही इंजेक्शन लेना पड़ेगा, बार बार लेने की जरूरत नहीं है। और देन खाने पीने में ध्यान देना बहुत जरूरी है, ऐसा खाना खाना है जहाँ पे जो है आयरन की कंटेंट ज्यादा हो। अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है महिला, तो उसमें तो इजियर होता है, क्योंकि मीट जो होता है, एनिमल जो फ्लैश होता है मीट में, तो उसमें हीम का कॉन्टेंट बहुत ज्यादा होता है। तो वो जैसे चिकन आइटम, पोल्ट्री आइटम हो गया, या जैसे कि कोई भी गोश्त जो मीट है वो खा सकती हैं, और इवन फिश ले सकती हैं, तो उसमें जो है हीमोग्लोबिन कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। और जैसे कोई, ज्यादातर लोग हमारे यहाँ पे वेजिटेरियन ही होते हैं, तो वेजिटेरियन डाइट में ये देखना जरूरी है कि आप कंबाइंड करके जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह ले, स्पेशली पालक है या ऐसे कलर्ड वेजिटेबल्स है जो उसमें ज्यादातर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, जैसे बैंगन हो गया, या जो जो कलरफुल है जैसे पम्पकिन हो गया, तो उसमें आपको जो है ज्यादातर आयरन मिलेगा। और प्लस आप हो सके तो जैगरी खाए, गुड़ है, वो भी बहुत अच्छा सोर्स ऑफ आयरन है। और हो सके तो आप आयरन यूटेंसिल्स में खाना पकाए, क्योंकि अगर आयरन की यूटेंसिल में खाना पकाए तो आयरन कंटेंट जो है आपका मील का वो बढ़ जाता है। तो ये तरीका है अलग अलग, और आयरन को नॉर्मली अगर आप खाना के साथ में खाएं आयरन टेबलेट को, तो उसमें एब्जॉर्प्शन कम रहता है, इसलिए आप कोशिश करें कि खाली पेट में ही आयरन टेबलेट को खाएं, तो जिससे कि आयरन एब्जॉर्प्शन जो है वो बेटर हो। और ऐसे चीजों के साथ में आयरन टेबलेट को ना खाएं कि उससे एब्जॉर्प्शन कम हो। बेसिकली जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप टी और कॉफी, चाय कॉफी पीते हैं और आयरन टेबलेट साथ में खाते हैं तो उसमें आयरन एब्जॉर्प्शन होने के चांसेस कम रहता है क्योंकि कैफीन और जो टैनिन होता है चाय में तो वो आयरन के साथ में कंबाइंड हो जाता है तो एब्जॉर्प्शन होने को नहीं देता है. तो ऐसी चीजें खाएं जैसे कि सिट्रिक एसिड जो विटामिन सी होता है तो उसमें सिट्रिक एसिड होता है जो आयरन एब्जॉर्प्शन में मदद करता है. तो अगर आयरन के साथ में नींबू पानी पी ले आयरन खाने के बाद में खाली पेट में तो उसमें एब्जॉर्प्शन

0: ट्रेड जो बेटर होगा। तो इस तरीके से महिला जो है खाना उना खाने पीने में ध्यान दे तो डेफिनेटली, और वर्म इन्फेस्टेशन अगर है तो डीवर्मिंग करे, तो क्योंकि वर्म इन्फेस्टेशन होगा तो उसमें भी काफी आयरन जो ब्लड लॉस होता है कई वर्म इन्फेस्टेशन, तो डीवर्मिंग का भी बहुत जरूरी है।
1: अच्छा, डीवर्मिंग की टेबलेट्स और साथ में आयरन टेबलेट्स दोनों ही कंटिन्यू कर सकते हैं?
0: दोनों ही ले सकते हैं
1: जी, इससे कुछ इफेक्ट तो नहीं होता?
0: ऐसे कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा डीवर्मिंग के साथ में। डीवर्मिंग तो एक ही बार खाना होता है, सिंगल टेबलेट है, तो आयरन जरूर ले सकते हैं
1: जी। तो खान पान के अलावा और किस तरह के जो सप्लीमेंट्री तौर पर और कुछ ले सकते हैं वे?
0: हाँ, जैसे हमने कहा कि सप्लीमेंट, आयरन सप्लीमेंटेशन तो लेना बहुत जरूरी है। कई बार हमारे यहाँ में बहुत सारा मिसकंसेप्शंस रहते हैं, मिथ्स रहते हैं। वो महिलाएं सोचती हैं अगर गवर्नमेंट, नॉट ओनली इंडियन गवर्नमेंट, WHO पूरा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये इंस्ट्रक्शन है कि हम आयरन टेबलेट खाना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, लेकिन कई महिलाओं को ये एक भ्रम रहता है कि आयरन टेबलेट्स खाएं तो बच्चा बहुत बड़ा होगा, मोटा होगा, तो डिलीवरी के समय में बहुत तकलीफ होगा। तो ऐसा भ्रम जो रहता है जो कि बिल्कुल भी गलत है और ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आयरन जो है बेसिकली ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है और बच्चे उससे मोटा नहीं होता। मोटा बच्चा इसलिए पैदा करते हैं कि कई बार हम लोगों की हमें फूड जो अवेलेबिलिटी जो है काफी बढ़ गया है, और स्पेशली अर्बन एरिया में देखे तो फिजिकल एक्टिविटी मदर का भी बहुत कम है। तो फिजिकल एक्टिविटी प्लस अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, ये मिला के कि एक नॉट ओनली बच्चे का, मदर का भी वेट गेन जो है बहुत ज्यादा होता है। तो अगर आपको वेट जो है नॉर्मल फॉर वेट, नॉर्मल फॉर जेस्टेशन वेट रखना है, आप नॉर्मल एक्टिविटी करते रहे और खाना जो है बैलेंस डाइट खाएं, यू नो। लेकिन हमारे यहाँ पे अभी ऐसा हो गया है कि बैलेंस डाइट नहीं लेते, ज्यादातर टूवर्ड्स फैटी फूड ज्यादा लेने का हाँ ऐसे हैबिट हो गया है, जिसके वजह से वेट बढ़ता है। लेकिन आयरन टेबलेट खाने से बच्चा का वेट जो है ज्यादा होगा ऐसा बिल्कुल भी
1: अच्छा,
0: नहीं।
1: आयरन टेबलेट बच्चे के वेट के लिए नहीं होता बल्कि हाँ, मदर के हेल्थ,
0: मदर के हेल्थ के लिए और बच्चे के लिए प्रॉपर हेल्थ फंक्शनिंग के लिए। क्योंकि अगर एनीमिया होता है मदर को तो डेफिनेटली मदर को प्रॉब्लम होगा और प्लस बच्चे को भी प्रॉब्लम होगा, ब्रेन ग्रोथ में भी असर पड़ता है। तो कई बार ऐसा बच्चे पैदा होता है कि जो IQ इतना ठीक नहीं होता है कि परफॉर्म नहीं कर पाता है अपना स्कूल में ये सब। तो ये सब जो है हमें कंसेप्शन से पहले ही सोच लेना है कि बिफोर कंसीविंग एनीमिया को पहले ट्रीटमेंट करना है, एंड ड्यूरिंग, अगर कंसेप्शन से पहले नहीं किया उसका इलाज तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो डेफिनेटली इस प्रॉब्लम को एड्रेस करना चाहिए। क्योंकि हम हेल्दी बच्चे हमको चाहिए, ना कि अनहेल्दी बच्चे जो कि हमेशा बीमार हो, जो स्कूल में भी परफॉर्म नहीं कर पाते, ऐसे बच्चे हमको पैदा नहीं करना है
1: जी। तो जैसे कि आपने कहा कि एक लेडी को जो प्रेगनेंसी में जो वेट गेन करती है तो कितना वेट गेन एक नॉर्मल होता है?
0: ये एक्चुअली डिपेंड करता है कि उसका बॉडी वेट कितना है। अगर कोई जैसे कि BMI हम लोग कैलकुलेट करते हैं बॉडी मास इंडेक्स के तौर पर, अगर कोई महिला जो है अंडर वेट है तो उसको एटलीस्ट 12 से 15 केजी जो है वेट गेन करना है अगर अंडर वेट है। नॉर्मल वेट है तो आप 11 से 12 किलो पूरा एंटायर प्रेगनेंसी में 9 मंथ्स में, जो कि फर्स्ट 3 मंथ्स में तो वेट गेन होता नहीं है क्योंकि उसमें वॉमिटिंग लगता है, कुछ खाने का मन नहीं होता। तो वेट गेन शुरू होता है 4th month ऑनवर्ड। तो 4th से लेके 9th बेसिकली जो लास्ट जो 6 months होता है उसमें वेट गेन जो है नॉर्मल वेट वालों को 11 to 12 किलो। लेकिन जो ओवर वेट है, ज्यादा ओवर वेट है या ओबीस है, तो उन लोगों को 5-6 किलो वेट गेन ही काफी है, उनको ज्यादा वेट गेन नहीं करना है। तो उसमें उनको अगर ज्यादा वेट गेन करता है तो उसके लिए प्रॉब्लम होता है
1: जी। और आजकल बहुत कॉमन शिकायत देखी गई है कि स्वेलिंग होती है, तो क्या ये एनीमिक ही इसका वजह है या फिर कुछ और कारण भी हो सकता है जो स्वेलिंग होते हैं आजकल?
0: हाँ, प्रेगनेंसी में थोड़ा सा स्वेलिंग तो कॉमन है क्योंकि वो प्रेशर पड़ता है यूटेरस जो जहाँ पे बच्चेदानी होते हैं, बच्चा बड़ा ग्रो करता है तो बच्चेदानी भी बढ़ता है, तो वो थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है वेन पे। बेसिकली वेन जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिटर्न लाता है हार्ट की तरफ में, तो वेन पे प्रेशर पड़ता کرتا ہے تو تھوڑا سا سوجن ہو جاتا ہے پیروں میں, دیٹ از کوائٹ نارمل. تو ایسے سوجن جو نارملی ہم کو شام کو دیکھنے کو ملتا ہے, جو ریسٹ کرنے کے بعد میں وہ سوجن جو ہے ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن اگر اینیمیا کا وجہ سے سوجن ہے تو وہ سوجن جو اگر آپ رات کو ریسٹ کرنے کے باوجود بھی وہ ٹھیک نہیں رہے گا کہ وہ کانسٹینٹلی جو ہے سویلنگ جو ہوگا. اور نہ صرف اینیمیا میں دیکھنے کو ملتا ہے, کئی بار الگ الگ کنڈیشنز ہوتا ہے, جیسے ہارٹ پرابلم ہے کسی کا یا کسی کا پریشر بہت زیادہ ہے, تو ایسے میں بھی ہم کو سویلنگ دیکھنے کو ملتا ہے. اور اس طریقے کا جو میڈیکل کنڈیشنز میں جو سویلنگ ہوتا ہے وہ نہ صرف پیروں میں دیکھنے کو ملے گا, آپ کو چہرے پہ بھی سوجن دیکھنے کو ملے گا. جیسے کڈنی پرابلم ہے کسی کا تو اس میں بھی ہمیں سوجن دیکھنے کو ملتا ہے, چہرے پہ سویلنگ ہوگا, آپ کے ہاتھوں میں فنگرز وغیرہ میں بھی سویلنگ دیکھنے کو ملے گا. رنگ جو ہے پہنا ہے لیڈی تو وہ رنگ ٹائٹ ہو جائے گا. تو یہ سب ایک سمٹم ہے کہ آپ کا جو سویلنگ ہے وہ جو نارمل نہیں ہے.
1: اچھا جی, تو آپ سنکشپ میں بہت شارٹ میں ہمارے شروتاؤں کو کیسے بتائیں گے کہ خاص طور پہ جو ہماری مہیلا شروتاؤں کو کیسے بتائیں گے کہ اینیمک سے کیسے بچے, کیا کریں؟
0: ہاں, میں مہیلاؤں کو سب سے پہلے یہی میں کہنا چاہوں گی کہ پہلے تو وہ پلان کرے پریگنینسی کو, اور پریگنینٹ ہونے سے پہلے وہ دیکھے کہ وہ اینیمک ہے یا نہیں ہے, اور اگر اینیمک ہے تو وہ پہلے اینیمیا کو ٹریٹ کرائے تو اس کے بعد میں پریگنینٹ ہو. تو اگر ایسا نہیں کیا لیکن پریگنینٹ ہے پتہ چلا تو سب سے پہلے خود کو جا کے رجسٹر کرائے وہاں میں نیئرسٹ میڈیکل سینٹر میں, اور اپنے آپ کو ٹیسٹ کرائے. اگر ہیموگلوبن لیول ٹھیک تو بھی آپ جو ہے 100 ٹیبلٹس ڈیورنگ پریگنینسی آئرن کے ضرور لیں, اور یہ دھیان رکھے کہ آپ کے آپ جو سوستھ رہے پورا پریگنینسی میں, اور آپ کا جو بچہ جو آپ جنم دینے جا رہے تو وہ بھی سوستھ طریقے سے نکلے. تو اس لیے آپ اپنے سوستھ کے لیے دھیان دے اور یہ قدم اٹھائے کہ آپ آئرن کی ٹیبلٹس لیں گے اور کھانے پینے میں دھیان رکھیں گے, اور ایسے چیزیں نہیں کھائیں جس سے کہ آئرن ابزارپشن میں پرابلم ہو, اور ایسے چیزیں کھائیں تاکہ آئرن ابزارپشن بیٹر رہے اور آپ کے شریر میں جو آئرن کی ماترا ٹھیک ٹھاک رہے. اور میں یہی چاہوں گی کہ آپ ہیلدی رہیں اور آپ کے بچے ہیلدی ہیں.
1: جی میم, آپ کا بہت بہت
0: تھینک یو.
1: آپ شروتا سن رہے تھے یہ کارکرم مہیلا جگت. آج اس کارکرم میں آپ نے سنا یہ بھیٹ وارتا, وشے تھا اینیمیا ایوم گر ویوستھا, اور ہمارے ساتھ تھی تومو ریبا اسٹیٹ ہاسپٹل نہالگن کے اسٹیٹ روگ کے وشیشجا ڈاکٹر بامبی تائنگ توکو.

जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वुमेन एंड फैमिली वेलफेयर का। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है। दोस्तों, प्रस्तुत है कार्यक्रम हिंदी फिल्मी गीतों का।

0: जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे हिंदी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। ये आकाशवाणी जयनगर का रोन FM 103.1 MHz से। दोस्तों प्रस्तुत है गालो डायलेक्ट में मन की बात।
1: तान्नारू अमागंब इजानु नो गदग प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ग आप उपमनाम रेडियो लो मेंकेंजी नाम मन की बात ग एक्सो गोला हमम गोला कान नान एपिसोडम गालो ग मेन लेंजी नाम तापाए गदग ओके काले ताले हिनाम गादा आगंब मन की बात ग होगो अली एपिसोड होगो मोनु नारुम लगदा तोमरखी दुना नुन नारुए हिंदू हिम दुम्बाहिम होगो वो नारू अलालना अली इकाता नाम गादम होगो लालेला आद नामला गदाने गाद ग इनोवेटिव आइडिया आबालो आगो मई जाबदना होके आइडिया लो या का गो कादु नी गाद ग रस रस जाब इलामेन लाये नाम अजन गादा आलोगोलो सोशल मीडिया लो आकेन गो एत्तो आशारी एकाशी ग अलना होमोई लोंगो मेंजिदु ला माज ब मकेंदुना दोई लुमाम इरगा मुआयारु दोब मुनुग इकामें का तानाम ग आबाम इरोप में रोबदु म मेंजितो हिगी आइडिया हिगी हेंदा दु बइन को नुन होगो वेबसाइट होगो इनला यो दाकुम अकेन अनिगो गाक्तो का होगो नुनु हेंदा दु बइए लके होगो होके होमोइलो गदा होगो यमुंद तोरको गा कोला गदा एम बला दुना मोसिन हिम अलब इरगा ब मला मोम तो होके बाबम यारुब हेम प्लागी दुअमला मो हेन लाकु हिम अगर हिम मुंबई बोलोगियन श्रीमान कृष्णा शेषाद्री म बई तो इरगा यारु नागो में कृष्णा जी म वेबसाइट गा आमेन हमसिन सिंपल यारुब लतु www.bhartiyaraja.com अमला मग इकामें का तानामम होक बाबम नुन यो बिलासिन पाए अम बिलांगो म तो मो कृष्ण जी ने आगोम जाबरगी बोलो आल दो अमला अजन गादा कृष्ण जी मुना न्यई जा पोन लो आगोम जाबरगी ला दो दू कृष्ण जी नमस्ते नमस्ते सर नमस्ते अबर मो हेंतबा नो पोराय लासनीमा नो दो इलुमा हिस्त्री पोरायना बसनीमा नो टेक्नोलॉजियम गा गपला हिस्त्री साइतम मोतु मो माजी ब म केनला हेन लिदु नो हिम गा दिगिम यो बैको अलरु तो सर नो मागोम जाब्रखिला जाब्रखि नामे गेंगो क्लगा ब आतरु ब मदु मोर हि नाम सारंगो ngo के बाबलो आजी को नो मेंजिए सारंगो इंजीनियर येना ओके ngo एमबीए पोरेला ओके आको ngo मार्केटिंग फील्ड लो इन लाकोता एक दोला हिम गात हिम इतुला सिन ngo आसिना पुक दो इलुमा हिस्ट्री ग बाबलो आदक हिरु ब मग अपनाम गो तातो योबे इबोलो हिस्ट्री हि किम यारु ब इरगा दो ब इत तदनाबे अमला मोहम्ब सिमतो।

ngun do yi luma abam yad lo hkid ogongun yarub agam improvement la hen lae krishna ji bharat gida hok yona do yi luma ambe nokala higim babhim gida hok naru niyam hemo palagidu amlamiko sarmunnam bharat gida ge histriyam school college gainalo hkai laitu higim nosin kadu higi aken empire ba aken kingdom higim kala do la hkaila ok him empire him disproportionate attention sen hoke padak hoke lam ba lo kap kap yaka empire sen ka to tako jabak nam empire cholas pallavas karkota dynasty ka to kashmir lo ahum se ka to any hamkam असम के कल्चर ओके अग पांगनामम येक्लाइतो होक बाबम गो अल्बहेम्मा एम्बिलांगो मुतो अकेन साइट गोमोला तकोनम एम्पायरम नारुग दुम्बालो हेमोयमला नो माजीब मेहनत दु गोनोम एम्बई हाइपोथेटिकल क्वेश्चन तकादु नोम इंडियन हिस्ट्री ग नी आउम ग बाबलो अगोमाई जामनाम पाबोलो नोये ने अगोम जाबेदे ओके योइला जाबेदे ओमसार अम्बोलोंगो मेंत्यारु भा अगो मेन्ये राजा राजा चोला ने मायोम राजेंद्र चोला ने सर चोला एम्पायर लोक तोरकोगा कोना ताकोनम नारू राजा लोक निगायारु नामुनु गो मुनुक लोक तकाला हेनलप मुदलपे नुनुक लो योब हिगी विजन हिगी आनमये अम्ला बृदेश्वर टेम्पल बा गंगई कोंडा चोलपुरम गजिना अत्त अत्तना मंदिर गा दम शिवजी का मंदिर हिम एग्जीक्यूट नम लगा ब विजन योलोक ला आको हिम प्लानिंग हिम योबे इको मुनुक लो हिगी मुना मोनम ही योबे आको मुनसिन हम्बा काई ब मुना मोनम मोला हुरुम हुरुम लो ब काबता ब दो ब नारुम काग हिद ब ओके अकोन पर्सनालिटी का मुके मुनम लो के हिगी इंडियन हिस्ट्री लोक अकेंता को नाम अंडर रेटेड पर्सनलिटी गोन्ना सर होका में हेमू गोम ग बाबम इंडियन हिस्ट्री लो लाइन होनी होम गोब पोर्दोना गो हिम हेम्मा हेमू अम नाम हेगी माजी ब आलना सिंपल ना बिजनेस इन नी गो बैतो म अकेन एम्पायर लो दाग्रोप्तो ओके म एम्पायर मोन्यूम ब इमातो म हिपाइगत गलगा ब म न मोन गोपसनितो म म ग करियर लो हम नि गोला आउम गो ब नि दुनि मा मोलाइतो ओके म हम नि गोला अनि गो ब जितितो सर आउम नान हिक्सिन माजी ब इंटरेस्टिंग ना इरगना पर्सनालिटी गोन्ना हिगी अनन्या म गो सर त्रिभुवन महादेवी हिगी ओडिसा लोक अकेन किंगडम होके आमेने भोमाकारा डायनेस्टी हिगी होके मग दो यसिन माजीब इरगादु म असम पिन गोला हामगो अनियोगो मग दोगोदोर लोके पाला एम्पायर मग एम्पायरम निमाग ब मोआलासार ओके मग राजा मग निल्लो होके निमाकलो हिलगलाको एम्ब इल्ले कोला हिगी एम्पायर हिगी आचिलल तोको ओके होके सरदार होके लीडर एम्पायरम तोते को ला केतो को ओगो त्रिभुवन महादेवी जी म होके गवर्नमेंटम काकुप तालेक लायत को ओके म इतियारु ब इन फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया ब इतो ओके म गवर्नमेंटम स्टेबलाइज ब न्यूम ब इत ब इमा ब पावरफुल यारु दो ब इत ब इतो अन्य एक सोलो कालिंगा ओक हिम एरिया हिम काला ताला ये तो इजा मुदु नो हिस्ट्रियम येगला ये दुनानी नो जालो बसिन दो इलुमा हिस्ट्री लो हिलिक तुरा जाबक दुनानी मोसिन इर्गा जाब मुला नोक साइतम काला ओक मोक मुकेन जाताला अलियारुब मुनाम तेबम होगो ये लसिन करेक्शन लसिन ओके साजेशन एम सिन जिला दू हम कंस्ट्रक्टिव फीडबैक लगा ब कुलीला दोनम अत्यारू ना

0: लगलगब मुनुक आजियारी इकामें काला मुनाम अतना गुनाम हुनाम बदाम सिन कातम दांगना नागालैंड ग फेक डिस्ट्रिक्ट ग वेसुला पुरोजी ग आबा हिक्सिन अम्बई इनगो वेसालुजी रुकनाम इन नामलोक ग गसा हसा नागो ओमेलोम मग आना बम रुकनाम इदब कातो ओक म अपुआना माजीब मसम तो 2021 ओगो म होके मसम हाक्सम को लोके फूल अलीलीला इरोप्तो दल दल ब म होके केनियल प आलदे तो आलदे मातो अमला अबम का पारोप्त को म का तो निमला या बा कब कब गदलो फूल अपुआना हिम माजीब निगा द लाल निगलाई तो वेसालु म हिम मग मग अपनाम गोब इरोप तो को गदा गंगो के काले ताले हिनाम गद्दा मुनुक बाहर बासर लो हम्ब या का आजियारी इकामें का तानाम का पादु ओक अग इकामें का तानाम का दुल लब नारूग गनाम हनाम बदाम गदन हमोला इमोदा ओडिसा ग देवरीगर लो आकेन दोलो को कादु दोड्रो कुसुमला लको गो होगो होक दोलू होक मेथिली बुएजी लोदाग ब मोतुमिंतो लखनाम अम पार्स इस नाला लखनाम महुआ ओक केंदु पत्ता लखनाम अत ओक कब कब अबा अबा लात पिंतो मग ओक होक कब कब नाम रूम तुम ग लागी नाम अबा अबा गादम होक मोतुम होके पातो इगदोला मेथिली जी देवरीगर लोक इको टूरिज्म लोसिन ये लिखना गो आजन गद्दा मेटिली जी मग गुनाम हनाम लोक आन गुदेन हमोहिगी कब कब अन न्याम गद्दम सिन काग ही मोदा इजा हम कम सिन पोयाना अन न्याम गद्द मोतुमिसम कास ताम नाम लगा बिलायदु आजन गद्दा इजा आओ निजर गद्द ग म नामो नाम युदयु मा कोदे हो कलेला ताल तोल्लोब पुलायदा ओकनुन हेम्पला असब मुयेलाप भारत गदाहिगी हम्ब युदयु मा मानम लोक हिगो दोगो होक हजार आउ नजरगात के साथ लो येमिनगन गो भईका होक इकामें का तानम होक आमेन मिशन शक्ति सेट होक एक सोगोला पीन गदालोक इगोला अनि हजार स्टूडेंट्सम सेटेलाइट टेक्नोलॉजी हेन्नाम ओक इनोवेशन ग अबालो हेनला इनला नाम पालायदु 23 अगस्त नेशनल स्पेस डे लो होक मिशन होके आकेन का केन रू ना लोकसम ग्रेटर नोएडा लो का पातो गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी लो मिशन शक्ति सेत ग पेस गोनाम इरोप्तो गदा गंगो के काले ताले हिनाम गद्दा हिलोमलो अबोकेडो आपासे हिगी माजी ब तपाला पांगनाम गो ब इदु हिम आपासे हिम हेन्ना लकलो अजिनाग ब इबेलाप होक डिमांड ओक पांगनाम सिन अंबजा मातो एक दो लाइजा हिम डाइनिंग टेबल लो सिन का पदाको इजाहिगी हेल्थ ओक प्रीमियम मार्केट ग मसोम जद्दा नागब इदु मुनुग रिकनाम इनगाद ग लगा बहिगी माजी ब कागुरता गुरदु आंध्र प्रदेश लोक कड़पा ग वरद राज जी ग काघिनाम एग्जाम्पल म लक लोक म ग रिकलो टोमाटोर ओक कोपाग रिक इलायतो लेकिन गो म ग आजन बागान लो एवोकाडो अपास हिम कातो ओक म यूट्यूब लोक काला होक लाम्बम हेन्तोकु इजालोब म अपी टन गोब एवोकेडो प्रोडक्ट हिम ने पारो पासो का घृदा गंग ओके काले ताले हिनाम गद्दा हिउमान लो जाने 3 सेप्टेम्बर मुन महानायक उत्तम कुमार जी ग बर आलोम लोदुमे अजन गद्दा उत्तम कुमार जी म आकेन वर्सेटाइल एक्टर भईतो म ग एक तीन लोक नारू गासे ना पुकलो दागला ये दुकु फिल्म मुसोमना गादगे मु नामगोना म श्रीमान सत्यजित रे म फिल्म नायक द हीरो गे नारू स्क्रिप्टम महानायक उत्तम कुमार जी ने ही मुदला एत्तो आजन गाता ngo mu padu ngo ya dogo kolkata lo road show imbed ogongo uttam kumar ji ga nam bai lo ke impacto ogongom aken ni go mu ga lok saem amen ji to ge da ga ngo ka kal ta le hinam ga da ngunu ge de ngunu traditional ba inam sat lo ngunam kap ka ba jana pa naru am jug hilaya namam sin कातम दोना आल देना होमोइलो मुन अदना गदम मुनो गद लोता दोना सेप्टेम्बर लो मुन विश्वकर्मा पूजा लोता दोना हकना गद लो मुन होके बाहर बासर लो के हकु हरा मोनगा दमसिन पांगमिन हिरो तो का ओक पोल याद जा दामाब दिवाली गद सिन आदाये गद पोल होगोंगो लगदानुन्नम वोकेल पोर लोकेल आबा होगो कुमरखी दुना वोकेल पोर लोकेल गे आबा नो कोदेलो के मोनाम दियालायो का होके विजन अत दोना मुन आग नाम लोक लगाब हरा लायोम लको यो बिलासिन काका हो सतो का आजन गद्दा मुनुक बाहर बासे लोसिन हम्ब अदक अदक ना याका का दुलाप अलग इकाता नाम लोक सोसाइटी लो अतना गुदेन हमो का दुलाप नुन ओके बाबलो मन की बात हो को एरू तो का नुनु पोताई नाम एक्सपीरियंस लोक गुदा ग यो न हरबा को लो कब ग लगा ब अली का घी नाम को ब इलादु ngo nunu suggestion nitom doi ok experience am toyaduna अके गो अके जा आगाम्ब
1: जी दोस्तों भी आप सुन रहे थे रीजनल वर्जन में मन की बात। ये आकाशवाणी टनगर का रून एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है।

0: जी दोस्तों, भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हिंदी गीतों का। प्रस्तुत है कार्यक्रम वेस्टर्न मेलेडीज का।
1: गुड मॉर्निंग डियर लिसनर्स एंड वेलकम टू आकाशवाणी ईटानगर। यू आर लिस्टिंग टू वेस्टर्न म्यूजिक वेयर वी विल एंजॉय सम ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट लव सॉन्ग टुगेदर एंड आई एम डिलाइटेड टू हैव योर कंपनी। सो लेट्स बिगिन टूडेज म्यूजिकल जर्नी। आवर फर्स्ट सॉन्ग इज हिट दैट आई मेट यू लव मी बाय अरियाना ग्रैंडे। It's a smooth and emotional song with a beautiful pop sound.

जी हाँ दोस्तों, भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेस्टर्न मेलेडीज का। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz से चाहती है दिल से दिल की बात। दोस्तों प्रस्तुत है कार्यक्रम फूले बिसरे गीत का, क्योंकि घड़ी के बज चुके हैं 9, ये वक्त है थोड़ा ठहरने का। कहते हैं कि संडे की ये शाम जब ढलती है तो दिल चाहता है कुछ ऐसी बातें हो, कुछ ऐसे नगमे बजें जो वक्त की गर्द में कहीं छुप गए हैं, पर आज भी दिल के उतने ही करीब हैं। आज के इस स्पेशल संडे नाइट में हम खोलने वाले वो काउंटलेस सॉन्ग जो 60s, 70s, 80s में सुनहरी यादें जो आज भी ताजा हैं।

जी हाँ दोस्तों, आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पे। चाहती है दिल से दिल की बात। दोस्तों, जिंदगी में कितने भी अंधेरे क्यों ना हो, उम्मीद की एक किरण सब बदल देती है। आज का दिन कुछ खास है क्योंकि जब हौसले बुलंद हो और नीयत साफ हो तो हर मुश्किल को हार मानना ही पड़ता है। आज के इस खूबसूरत सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी सुबह की, एक ऐसे जज्बे की, क्योंकि सच ही कहा गया है कि आई है बहारें मिटे जुल्म ओ सितम। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक एहसास है। जब नफरतों के बादल हटते हैं और प्यार की धूप खिलती है, जब अंधेरे छटते हैं और हम रुक जाएं, तभी कुछ ऐसी ताकतें उभर कर आती हैं जो जुल्म और सितम का अंधेरा मिटाकर नई बहार ले आती हैं। सोचो जरा कितना सुकून मिलता है उस वक्त जब हर तरफ सिर्फ सुकून हो, अमन और खुशियों की खुशबू फैल जाती हो।

जी हाँ दोस्तों, आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर केंद्र के अरुण FM 103.1 MHz पे। चाहती है दिल से दिल की बात। दोस्तों, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ बदलते नहीं, बस गहरे होते जाते हैं। उनकी याद एक ठंडी आग की तरह होती है। ओ बलम तेरे प्यार की ठंडी आग जो रूह तक उतर जाती है। वो एहसास, वो छुपी हुई बातें और वो अधूरी सी ख्वाहिशें जो सिर्फ एक रेडियो वेव पर ही बयां हो सकती है।

दोस्तों, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो दिन के शोर में, ऑफिस की भाग दौड़ में या ट्रैफिक के हॉर्नों में कहीं दब के रह जाती हैं। पर जैसे ही घड़ी की सुई रात के उस हंसी पड़ाव पर पहुंचती है ना, दिल के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं और कहते हैं, आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले।

दोस्तों, ये थे आज के भूले बिसरे गीत जो हमेशा दिल को एक नई ताजगी देते हैं। ये पुराने नगमे कभी पुराने नहीं होते, ये हमेशा दिल के करीब रहते हैं। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz से। दोस्तों, आपको बता दें कि आज के प्रसारण सभा में प्रसारित कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ हैं प्रसारण निष्पादक गई रेते तथा तकनीकी अभियंता गोलो कोलो। दोस्तों, अब से थोड़ी देर में आप आनंद ले पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित सभी कार्यक्रमों को। तब तक के लिए आप अपने रेडियो दोस्त साजिद इकबाल को दीजिए इजाजत। शुभ रात्रि, शब खैर।

कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जो समय बीत जाने के बाद भी हमारे बीच रहती हैं। वे इतिहास के पन्नों से निकलकर आज भी हमसे बातें करती हैं, कभी कविता के जरिए, कभी खेल के मैदानों की यादों के जरिए, और कभी अपने जीवन के अनुभवों के जरिए। इन आवाजों में एक पूरा इतिहास सांस लेता है, और जब बरसों बाद ये आवाजें फिर सुनाई देती हैं तो लगता है जैसे बीता हुआ कल आज से कुछ कह रहा हो। शायद इसलिए आवाज हमारी पहचान होती है।

0: फिराक गोरखपुरी, मेजर ध्यानचंद और अमृता प्रीतम, आज ये तीनों महान हस्तियां हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी आवाजें हमारे साथ हैं। आकाशवाणी के अभिलेखों में सुरक्षित इन आवाजों के माध्यम से आज हम उन्हें फिर याद करेंगे, उनकी बातें सुनेंगे, उनके जीवन को समझेंगे और जानेंगे कि इतने वर्षों के बाद भी उनकी आवाजें हमें क्यों प्रेरित करती हैं। आइए समय की इस दूरी को कुछ देर के लिए मिटाते हैं और सुनते हैं उनकी आवाज। इन तीनों की दुनिया अलग थी। एक शायर थे, एक महान खिलाड़ी और एक प्रसिद्ध लेखिका। लेकिन इन तीनों में एक बात समान थी, इन्होंने अपने अपने क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई और अपने पीछे ऐसी विरासत छोड़ी जिससे आने वाली पीढ़ियां आज भी प्रेरणा लेती हैं। सितारों से उलझता जा रहा हूं, शबे फुरकत बहुत घबरा रहा हूं, तेरे गम को भी कुछ बहला रहा हूं, जहां को भी समझता जा रहा हूं। अब सुनते हैं एक ऐसी आवाज जिसने उर्दू शायरी को अलग पहचान दी।
1: शायरी तो हसास तरीके तो कोई बात कह देने का नाम नहीं, शायरी महज इजहार नहीं, शायरी रूहानी लिहाज से एक तामीर, तकरीब की फोटोग्राफी।
0: 8 अगस्त 1896 को गोरखपुर में जन्मे फिराक गोरखपुरी का नाम था रघुपति सहाय। वे उर्दू के मशहूर शायर और लेखक थे। उनकी शायरी में प्रेम, प्रकृति, जीवन और इंसानी रिश्तों की गहरी समझ दिखाई देती है।
2: किसी का कौन हुआ यूं तो उम्र भर, फिर भी ये हुस्न इश्क तो धोखा है सब, मगर फिर हजार बार जमाना इधर से गुजरा है, नई नई सी है कुछ तेजी रह गुजर के।

0: फिराक की खासियत ये थी कि उनकी रचनाओं में भारतीय जीवन और संस्कृति की सहज झलक मिलती है। उन्होंने अपनी शायरी के जरिए इंसान और इंसान के बीच के रिश्तों को समझने की कोशिश की। उनकी भाषा और सोच में भारत की उस साझा संस्कृति की झलक मिलती है जहां अलग अलग भाषाएं और परंपराएं होते हुए भी भावनाएं एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं।
1: उन्हीं के दिल है अमीने रमूज आजादी, जो जानते हैं असीरी है एक पंथ से
0: फिराक की आवाज में भी वही अपनापन महसूस होता है जो उनकी शायरी में दिखाई देता है। भारत की खूबसूरती भी यही है। यहाँ भाषाएं अलग हैं, बोलने का अंदाज अलग है, लेकिन भावनाएं एक जैसी हैं।
2: मैं ये नगमे गाते गाते कितनी दूर निकल आया, कायनात की हर सरहद नजरों से छुपती जाती है। अलविदा ऐ जन्म साथियों, अलफिराक ऐ हम असरो, एक अनसुनी पुकार दूर से मुझको कहीं बुलाती है। अब तुमसे रुखसत होता हूँ, आओ संभालो साज बनो, नए तराने छेड़ो, मेरे नगमों को नींद आती है।
0: शब्द अलग हो सकते हैं, लहजे अलग हो सकते हैं, लेकिन जब बात दिल से निकलती है तो वो हर दिल तक पहुंचती है। शायद यही फिराक की सबसे बड़ी ताकत थी। उन्होंने भाषा की सीमाओं के पार जाकर इंसान को इंसान से जोड़ दिया। बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, तुझे ऐ जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं, मेरी नजरें भी ऐसे कातिलों का जानो ईमान है, निगाहें मिलते ही जो जान और ईमान लेते हैं।

0: The final of the Olympic hockey. The wonderful Indian team in the white shorts, who so far have scored 30 goals to naught in the tournament, are playing Germany. India score. The final result was India 8, Germany 1.
1: भारतीय हॉकी की कहानी उस दौर की कहानी है जब भारत की प्रतिभा और खेल कौशल ने दुनिया को अपना मुरीद बना लिया था और इस गौरवशाली यात्रा के सबसे उज्जवल अध्यायों में एक नाम था मेजर ध्यानचंद। उनके लिए हॉकी महज एक साधना थी। गेंद पर अद्भुत नियंत्रण, खेल की गहरी समझ और गोल करने की असाधारण कला ने उन्हें दुनिया के महानतम खिलाड़ियों की पंक्ति में ला खड़ा किया। लेकिन ध्यानचंद की असली महानता उस खेल संस्कृति और विरासत में थी जो वे आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ गए। 29 अगस्त उनकी जयंती को हम राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। ये दिन उन असंख्य खिलाड़ियों के परिश्रम, अनुशासन और समर्पण को सम्मान देने का दिन भी है जो अपने खेल के माध्यम से देश का गौरव बढ़ाते हैं। ध्यानचंद से जुड़ी अनगिनत कहानियां आज भी हमारे बीच जीवित है। तस्वीरों में दर्ज उनका व्यक्तित्व, मैदान से जुड़े किस्से और उनकी उपलब्धियां हमें उस स्वर्णिम दौर की याद दिलाते हैं। लेकिन जब इतिहास के पन्नों से निकलकर उनकी आवाज हमारे सामने आती है तो वो दौर और भी जीवंत हो उठता है। आइए सुनते हैं मेजर ध्यानचंद की अपनी आवाज आकाशवाणी के अभिलेखों से।
2: जो फॉरेन कंट्री जो हॉकी सीखी है उसमें शक नहीं है कि हिंदुस्तान के जरिए सीखी है। मैंने देखा है वहाँ कि हॉलैंड के अंदर और जर्मन के अंदर जिस वक्त हम लोग प्रैक्टिस करने के लिए जाते थे ग्राउंडों पर तो उनके टेलीविजन वगैरह फोटोग्राफ्स वगैरह स्लो मोशन और फास्ट मोशन लेने के लिए हमारे पीछे पीछे लग जाते थे। लेकिन हम लोग खिलाड़ी थे, हमको इन बातों में जरा सा भी ख्याल नहीं होता था कि क्या है। एक फोटो मांग लेते थे, बाकी वो अपना सीक्रेट हर एक चीज लड़कों को खिलाने के लिए खींच लेते थे। और

0: फोटोज स्क्रीन के ऊपर अपने बच्चों को, ये मैंने 63 में देखा, जब मैं 63 में बर्लिन में गया फिर ये देखा बच्चों को वो स्क्रीन के ऊपर उसको उनको शो करते थे और उनको उसी वक्त साथ में बोलते भी जाते थे कि देखो ये हाथ इधर रखना है, ये पैर इधर है और ये सिर इधर है, बाल को जब ड्रिबल करना है तो उसका हेड किधर होना है फलान। ऐसा करने के बाद उन लोगों ने इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर ली कि हम अब हिंदुस्तान का मुकाबला करने लगे। मैंने देखा है रिसेंटली यूरोप कंट्री के खेलों को कि वो हमारे मुकाबले में थोड़ा थोड़ा ड्रिबलिंग करने लगे हैं बजाय हिट मारने के, अब ड्रिबलिंग भी शुरू कर दिया उन लोगों ने। तो इसमें शक नहीं है कि सीखा हम लोगों से है और इसमें हमारे लोगों की, हमारे हिंदुस्तान की अभी तक वो कंट्री तारीफ करती है कि हाँ हिंदुस्तान जो खेलती है हॉकी वो हिंदुस्तान के सिवा और कोई नहीं खेल सकता।
1: बादलों के महल में मेरा सूरज सोया हुआ है और उस महल का कोई दरवाजा नहीं, कोई खिड़की नहीं, कोई सीढ़ी नहीं, और सदियों के हाथों ने जो पगडंडी बनाई है वो मेरे चिंतन के पैरों के लिए बहुत संकरी है। मैं अपने सूरज के पास कैसे पहुंचूं जो बादलों के महल में सोया हुआ है।
2: अभी आपने सुनी अमृता प्रीतम की आवाज, उनकी बातों में एक सादगी है और इसी सादगी में उनके अनुभवों की गहराई भी दिखती है। अमृता प्रीतम ने ऐसे समय में लिखा जब समाज में महिलाओं के लिए अपनी बात खुलकर कहना आसान नहीं था। उन्होंने प्रेम के बारे में लिखा, उन्होंने बंटवारे का दर्द लिखा, उन्होंने औरत के मन की बात लिखी और सबसे बढ़कर उन्होंने अपने तरीके से जीने और लिखने की हिम्मत दिखाई। 31 अगस्त 1919 को जन्मी अमृता प्रीतम भारतीय साहित्य की ऐसी आवाज थी जिन्होंने प्रेम, रिश्तों, अकेलेपन और अपने समय की पीड़ा को बहुत सहज शब्दों में लिखा। उनकी लेखनी में एक खास बात थी, वे दिल की बात कहने से कभी पीछे नहीं हटी।
1: हमारे देश के 7 पवित्र स्थान 7 पुरियां कहे जाते हैं, अयोध्या, मथुरा, माया, कांची, काशी, अवंती और द्वारापुरी। इनमें से द्वारापुरी सागर के किनारे थी जो कृष्ण के देह त्यागने के 7वें दिन सागर में अलोप हो गई थी। बाद में वो द्वारका के नाम से दूसरे स्थान पर बस गई, पर अपने मूल स्थान से वो लोप हो चुकी है। मैं सोचती हूँ कि सागर में लोप हो चुकी द्वारावती हर इंसान के मैं का वो टुकड़ा है जिसकी तलाश हर इंसान के मैं को करनी होती है और उसका इतिहास खोजना होता है। इसी मैं की तलाश में मैंने जाना कि मेरे में और एक ब्राह्मण में क्या फर्क है। यही कि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। मेरे में और एक क्षत्रिय में भी यही फर्क है कि मैं क्षत्रिय नहीं हूँ। मेरे में और एक वैश्य में भी यही फर्क है कि मैं वैश्य नहीं हूँ। किसी तरह मेरे में और एक शूद्र में भी यही फर्क है कि मैं शूद्र नहीं हूँ। और जाना कि मेरे में और एक हिंदू, सिख, मुसलमान या ईसाई में भी यही फर्क है कि मैं हिंदू, सिख, मुसलमान या ईसाई नहीं हूँ। मेरे मैं की एक पवित्र पुरी द्वारावती फिर कौन से पानी में लोप हो गई, यही खोजते हुए मैंने अपनी द्वारावती का भेद पा लिया कि मैं चरक जाति की हूँ। हमारे प्राचीन काल में चरक उसे कहा जाता था जिसका मुतालिया, जिसका अध्ययन जिंदगी में कभी खत्म नहीं होता था। वो तमाम जिंदगी इलम को, ज्ञान को ग्रहण करता था और तमाम जिंदगी उस इलम को, ज्ञान को बांटता रहता था। मैंने इलम के लिए अपनी प्यास को समझ लिया तो अपनी जाति पहचान ली और जान लिया कि दो हाथों से जो अर्जित करना है वही हजार हाथों से बांट देना है।
2: आज इतने वर्षों बाद भी अमृता प्रीतम की बातें हमें अपनी सी लगती हैं। शायद इसलिए कि उन्होंने अपने समय की उन भावनाओं को शब्द दिए जिन्हें महसूस तो बहुत लोग करते थे

0: लेकिन कह नहीं पाते थे। प्रेम हो, बिछड़ने का दर्द हो, विभाजन की पीड़ा हो, या एक स्त्री के मन और अपनी पहचान की बात, अमृता प्रीतम ने हर विषय को बहुत सच्चाई और बेबाकी से लिखा।
1: अर्ध नारीश्वर का फलसफा खो गया तो दास्ता पैदा हुई, शिव शक्ति जैसा चिंतन खो गया तो जड़ता पैदा हुई, धर्म खो गया तो प्रतिकर्म में से मजहब पैदा हुआ, आत्मा खो गई तो शरीर एक वस्तु बन गया, मजहब और सियासत बहुत बड़े माध्यम बन गए जिनके हाथों वस्तु बन चुके इंसान का व्यापार होता है।
0: उन्होंने अपने जीवन में भी अपनी राह खुद चुनी और अपनी पहचान बनाई। यही वजह है कि उनका साहित्य केवल एक दौर की कहानी नहीं रह गया, उनकी रचनाएं कई भाषाओं में पढ़ी और अनुदित हुई। अलग अलग प्रदेशों के पाठकों ने उनमें अपने जीवन और अपनी भावनाओं की झलक देखी। शायद यही किसी लेखक की सबसे बड़ी ताकत है। उनकी बात उनके दिल से निकलती है लेकिन पहुंचती है हर दिल तक। अमृता प्रीतम के साथ तो आकाशवाणी का रिश्ता और भी खास है। अमृता प्रीतम ने दिल्ली में आकाशवाणी की पंजाबी सेवा में काम किया था और 1961 तक जुड़ी रही, यानी जिस आकाशवाणी के अभिलेख आज उनकी आवाज को हमारे लिए संभाल कर रखे हुए हैं, कभी उसी आकाशवाणी का हिस्सा बनकर अमृता प्रीतम ने भी श्रोताओं तक अपनी बात पहुंचाई थी।
1: मेरी तमाम दुनिया सपनों की दुनिया है, इसे तकसीम करूं तो एक हिस्सा जागती आंखों के सपनों से भरा हुआ है और दूसरा सोई हुई आंखों के सपनों से। जिंदगी का यथार्थ क्या है और क्या हो सकता था, इसी यात्रा को मैं नाम देती हूं मैं से लेकर मैं तक की यात्रा, यानी अपने ही छोटे मैं से लेकर अपने ही बड़े मैं तक की यात्रा। यूनान के लेखक निकोस काजांजाकिस ने मेरे इस एहसास को बड़े खूबसूरत अल्फाज दिए थे, क्रिएट एन आइडियलाइज्ड इमेज ऑफ योर सेल्फ एंड ट्राई टू रिजेंबल इट। मैंने काजांजाकिस के इन अल्फाज को गुरु मंत्र की तरह धारण किया है और जो सोचती रही लिखती रही वो एक यात्रा है, अपने छोटे मैं से लेकर अपने बड़े मैं तक पहुंचने की। कह सकती हूँ कि ये एक अक्षर की यात्रा है, छोटे मैं से लेकर बड़े मैं तक की यात्रा, गुलामी से स्वतंत्रता तक की यात्रा, नफरत से मोहब्बत तक की यात्रा, जड़ से चेतन तक की यात्रा, अक्षर से अर्थ तक की यात्रा और महदूद से लामहदूद तक की यात्रा, यानी सीमित से असीम होने तक की यात्रा।

0: समय बीत जाता है, लोग चले जाते हैं, लेकिन उनकी आवाजें रह जाती हैं। और जब वे आवाजें फिर सुनाई देती हैं, तो लगता है जैसे बीता हुआ समय कुछ पल के लिए लौट आया हो। एक ने अपने शब्दों से जिंदगी को आवाज दी, एक ने अपने खेल से देश का गौरव बढ़ाया, और एक ने अपनी शायरी से दिलों में जगह बनाई। रास्ते अलग थे, लेकिन मंजिल एक। अपने हुनर को पहचानना, उसे साधना और ऐसा काम करना जो वक्त बीत जाने के बाद भी लोगों को प्रेरित करता रहे। अमृता प्रीतम की लेखनी से हम अपने मन की बात कहने की हिम्मत सीखते हैं। मेजर ध्यानचंद से मेहनत, अनुशासन और अपने देश के लिए कुछ कर दिखाने का जज्बा सीखते हैं, और फिराक गोरखपुरी से भाषा और संस्कृति की सीमाओं से ऊपर उठकर इंसान को समझना सीखते हैं। समय बदलता रहेगा, पीढ़ियां बदलती रहेंगी, लेकिन इन महान व्यक्तित्वों से मिलने वाली सीख कभी पुरानी नहीं होगी। नई पीढ़ी इनके जीवन से सीखती रहेगी और अपने सपनों को पूरा करने का साहस पाती रहेगी। ये तीनों आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन इनकी यादें हैं, इनके शब्द हैं, इनके अनुभव हैं, और सबसे बढ़कर इनकी आवाजें हैं। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मगर आवाज वो ठहर जाती है। यही तो है अनुगूंज, वक्त के साथ तस्वीरें धुंधली पड़ जाती हैं, नाम यादों में कहीं पीछे छूट जाते हैं, लेकिन आवाज अपने होने की एक निशानी छोड़ जाती है।
1: अभी आप आकाशवाणी अभिलेखागार द्वारा निर्मित कार्यक्रम अनुगूंज सुन रहे थे। वाचन आशुतोष कुमार, शीर्षक गीत राजेश राज और गायक जितेंद्र सिंह, शोध आलेख एवं निर्देशन मोनिका गुलाटी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। भारत और उज्बेकिस्तान ने आपसी संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया है। उज्बेकिस्तान भारत को यूरेनियम की दीर्घकालिक आपूर्ति के लिए रूपरेखा तय करने और दुर्लभ खनिजों के खनन स्थलों पर चर्चा करने के लिए भी सहमत हुआ है। दोनों देशों ने आज खनन, आयुर्वेद, पर्यटन, आर्थिक और वित्तीय संवाद, व्यापक और रणनीतिक साझेदारी, उच्च शिक्षा और पर्यावरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के बीच द्विपक्षीय वार्ता के दौरान उज्बेकिस्तान में पढ़ाई के लिए जाने वाले भारतीय युवाओं के हित में और सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों के लिए कई उपायों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद और अलगाववाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर अमल करते हैं।
1: दोनों देशों के बीच करीबी रक्षा और सुरक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास को दर्शाता है। आने वाले समय में हम दोनों देशों की डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच डायरेक्ट लिंकेज, को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट को बढ़ावा देंगे। हमारा मानना है कि टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म पूरे क्षेत्र के लिए गंभीर चुनौती है। इनके विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारा साझा संकल्प रहा है और आगे भी रहेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा है कि दोनों देशों ने आपसी संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान ओली दराजली दुस्तलिक ऑर्डर भी प्रदान किया गया। ये विदेशी नेताओं को प्रदान किए जाने वाला उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान है। इसके बाद श्री मोदी ने तशकंद में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर पुष्पांजलि भी अर्पित की। उज्बेकिस्तान की सफल यात्रा के बाद श्री मोदी किर्गिस्तान की दो दिन की यात्रा के लिए बिश्केक पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में शामिल होने के अलावा कई सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज श्री मोदी ने कहा कि बड़ी संख्या में युवा इस अभियान में शामिल हो रहे हैं।
1: नशा मुक्त भारत के लिए क्या आप कोई पावरफुल स्लोगन बना सकते हैं? क्या हमारे यंग म्यूजिशियंस ऐसे सॉन्ग्स बना सकते हैं जिनमें ड्रग फ्री लाइफ का मैसेज हो? क्या स्टूडेंट्स और थिएटर ग्रुप्स दिल को छू लेने वाले शॉर्ट प्लेज लिख सकते हैं जिनमें ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी हो? हमारे देश में बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर्स की कमी नहीं है। मेरा आग्रह है कि वे अलग अलग भाषाओं में ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे इस दिशा में समाज को मदद मिले।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से 35 लाख महिलाओं को नई शक्ति प्राप्त हो रही है। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 781 हो गई है। नेपाल सरकार ने भोटेकोशी नदी में बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी किया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बाढ़ के बाद नेपाल में अब तक 149 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। पहले लापता करीब 50 भारतीय नागरिकों से फिर संपर्क हो गया है। 275 भारतीय नागरिक अभी भी लापता हैं, वहीं 128 भारतीय मूल के लोग लापता हैं। मणिपुर के मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने राज्य में समाज के सभी वर्गों से बंद या ब्लॉकेड नहीं करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अपनी मांगे मनवाने के लिए इस तरह की गतिविधियों से कभी कभी अवांछित हिंसक घटनाएं हो जाती हैं। जर्मनी ने स्पेन को 1-0 से हराकर हॉकी पुरुष विश्व कप का खिताब जीत लिया है। बेल्जियम में खेले गए फाइनल मुकाबले के 44वें मिनट में जर्मनी के मिथेल स्टुफथॉफ ने मैच का एकमात्र गोल किया। इससे पहले तीसरे स्थान के लिए खेले गए मुकाबले में अर्जेंटीना ने नीदरलैंड्स को 2-1 से हरा दिया। और क्रिकेट में महिला एशिया कप में भारत अपने अभियान की आज शुरुआत कर रहा है। थाईलैंड के साथ खेले जा रहे पहले मुकाबले में भारत ने थाईलैंड को जीतने के लिए 160 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में थाईलैंड ने ताजा समाचार मिलने तक पांचवें ओवर में 2 विकेट खो करके 34 रन बना लिए थे। इससे पहले भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर 159 रन बनाए। भारत के लिए शेफाली वर्मा ने 64 रन की शानदार पारी खेली। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: तक 149 भारतीयों को बचाया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 1.5 लाख डॉलर की आपातकालीन सहायता जारी की। नासा ने नई आकाशगंगाओं और बाह्य ग्रहों की खोजों के लिए अंतरिक्ष दूरबीन का सफल प्रक्षेपण किया। और पुरुष हॉकी में जर्मनी ने स्पेन को 1-0 से हराकर विश्व कप का खिताब बरकरार रखा। अरब समाचार विस्तार से। भारत और उज्बेकिस्तान ने आपसी संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया है। उज्बेकिस्तान भारत को यूरेनियम के दीर्घकालिक आपूर्ति के लिए रूपरेखा तय करने और दुर्लभ खनिजों के खनन स्थलों पर चर्चा करने के लिए भी सहमत हुआ है। दोनों देशों ने आज खनन, आयुर्वेद, पर्यटन, आर्थिक और वित्तीय संवाद, व्यापक और रणनीतिक साझेदारी, उच्च शिक्षा और पर्यावरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के बीच द्विपक्षीय वार्ता के दौरान उज्बेकिस्तान में पढ़ाई के लिए जाने वाले भारतीय युवाओं के हित में और सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों के लिए कई उपायों पर चर्चा हुई। ताशकंद विश्वविद्यालय में संस्कृत की चेयर स्थापित करने के साथ हिंदी के लिए लाल बहादुर शास्त्री के नाम से 100 छात्रवृत्तियों की घोषणा की गई। भारत ने अराल सागर क्षेत्र में वनीकरण के लिए 10 लाख डॉलर का अनुदान देने का फैसला किया है। उज्बेकिस्तान में यूपीआई के इस्तेमाल के लिए समझौता किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद और अलगाववाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर अमल करते हैं।
1: दोनों देशों के बीच करीबी रक्षा और सुरक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास को दर्शाता है। आने वाले समय में हम दोनों देशों की डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच डायरेक्ट लिंकेज, को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट को बढ़ावा देंगे। हमारा मानना है कि टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म पूरे क्षेत्र के लिए गंभीर चुनौती है। इनके विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारा साझा संकल्प रहा है और आगे भी रहेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने आपसी संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया।
1: इस वर्ष हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 15 साल हो रहे हैं। इस विशेष अवसर पर हमने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज हमने हमारी साझेदारी के इस नए स्वरूप में तेज गति और ठोस परिणामों के साथ आगे बढ़ने का एम्बिशियस एजेंडा तैयार किया है। हमारा द्विपक्षीय व्यापार 1 बिलियन डॉलर पार कर चुका है। अब हमने 2030 तक 5 बिलियन डॉलर व्यापार का लक्ष्य रखा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश खेलों और हिंदी को प्रोत्साहन देने के क्षेत्र में सहयोग के लिए मिलकर काम करेंगे।
1: दोनों देशों के युवाओं, विशेषकर स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के बीच एक्सचेंज को बढ़ावा देना हमारी उच्च प्राथमिकता है। दोनों देशों के बीच टूरिज्म बढ़ाने के लिए आज प्रोग्राम ऑफ कोऑपरेशन पर सहमति बनी है। मुझे खुशी है कि उज्बेकिस्तान में हिंदी भाषा को प्रमोट करने के लिए आज हम स्कॉलरशिप की घोषणा करने जा रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान ओली दराजली दुस्तलिक ऑर्डर भी प्रदान किया गया। श्री मोदी ने इस सम्मान को सभी भारतीयों को समर्पित किया और कहा कि ये दोनों सभ्यताओं के बीच चिरस्थायी मैत्री का प्रतीक है। इसके बाद श्री मोदी ने ताशकंद में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में महात्मा गांधी सेंटर का दौरा किया। श्री मोदी ने भारतीय विशेषज्ञों और छात्रों से बातचीत भी की। उज्बेकिस्तान की सफल यात्रा के बाद श्री मोदी किर्गिस्तान की 2 दिन की यात्रा के लिए बिश्केक पहुंच गए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में शामिल होने के अलावा कई सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यह सम्मेलन शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। भारत वर्ष 2017 से SCO का पूर्ण सदस्य है। प्रधानमंत्री शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वे संगठन के मंच पर सुरक्षा, संपर्क और अवसर के क्षेत्र में भारत की प्राथमिकताओं को रेखांकित करेंगे। प्रधानमंत्री शिखर सम्मेलन से इतर SCO के सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। अपनी बिश्केक यात्रा के दौरान

0: प्रधानमंत्री श्री मोदी छठे विश्व नॉमेड खेलों के उद्घाटन समारोह में भी शामिल होंगे। यह आयोजन मध्य एशिया की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं का उत्सव है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
1: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 781 हो गई है। आपदा के पांचवें दिन भी 2500 से अधिक लोग लापता हैं। बचाव दल लापता लोगों की तलाश और फंसे हुए लोगों को निकालने में जुटे हैं। अब तक प्रभावित इलाकों से 8186 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है, जिनमें 227 विदेशी नागरिक हैं। नेपाल सरकार ने भोटेकोशी नदी में बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी किया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बाढ़ के बाद नेपाल में अब तक 149 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। 275 भारतीय नागरिक अभी भी लापता हैं। वहीं तिब्बत में आई बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। चीनी अधिकारियों के अनुसार 546 लोग अब भी लापता हैं, जिनमें कई भारतीय भी शामिल हैं। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल को 68.5 टन राहत सामग्री भेजी है और खोज तथा बचाव कार्यों में सहायता के लिए तकनीकी दल, फॉरेंसिक विशेषज्ञ और उपकरण भेजे हैं। विदेश मंत्रालय ने एक पोस्ट में बताया कि 11 टन राहत सामग्री लेकर चौथा विमान आज नेपाल पहुंचा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नेपाल में आई भीषण बाढ़ से प्रभावित लोगों को तत्काल स्वास्थ्य सेवाएं और जरूरी राहत पहुंचाने के लिए दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय स्वास्थ्य आपात कोष से 1,50,000 अमरीकी डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान की है। नासा की नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप को अंतरिक्ष के कुछ सबसे बड़े रहस्यों को सुलझाने के मिशन पर फ्लोरिडा से भेजा गया है। अगले 5 वर्ष में इस दूरदर्शी से वैज्ञानिकों को अब तक अनदेखी आकाश गंगाओं और बाह्य ग्रहों की खोज करने में मदद मिलेगी। इससे डार्क एनर्जी की प्रकृति को समझने और ब्रह्मांड के विकास का पता लगाने में भी सहायता मिलेगी। जर्मनी ने स्पेन को 1-0 से हराकर पुरुष हॉकी विश्व कप का खिताब जीत लिया है। बेल्जियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में 44वें मिनट में जर्मनी के मिशेल स्ट्रोथॉफ ने एकमात्र गोल किया। दुबई में एशिया कप महिला T20 क्रिकेट में भारत ने थाईलैंड को 160 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में थाईलैंड ने ताजा समाचार मिलने तक 8वें ओवर में 4 विकेट पर 43 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और उज्बेकिस्तान ने द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। यूरेनियम आपूर्ति के लिए दीर्घकालिक समझौते पर सहमति जताई और 2030 तक $5 अरब के व्यापार का लक्ष्य निर्धारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च राजकीय सम्मान प्रदान किया गया। श्री मोदी 26वें शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए किर्गिस्तान के बिश्केक पहुंचे। नेपाल ने भोटेकोशी नदी के किनारे बाढ़ की नई चेतावनी जारी की। मृतकों की संख्या 780 से अधिक हुई। और पुरुष हॉकी में जर्मनी ने स्पेन को 1-0 से हराकर विश्व कप का खिताब बरकरार रखा। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार,
2: गुड इवनिंग। दिस इज आकाशवाणी। आई एम रेशमा तिवारी विथ द वर्ल्ड न्यूज। द हेडलाइंस। India and Uzbekistan elevate bilateral ties to comprehensive strategic partnership, seal long-term uranium supply pact and set $5 billion trade target by 2030. Prime Minister Narendra Modi conferred Uzbekistan's highest state honor, reaches Kyrgyz Republic to take part in 26th SCO summit at Bishkek. Nepal issues fresh flood alert along Bhotekashi River. 149 Indians rescued so far as death toll crosses 780. WHO releases

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त फिरोज और वक्त हो चुका है हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक ठीक 10:31 और 11 सेकंड। तो आप सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार पुरखलूस आदाब और एक बार फिर से सदाबहार गीतों के कारवां को लेकर हाजिर हूं मैं आपकी अपनी पसंदीदा महफिल में जिसका नाम है हर सिंगार। और हर सिंगार यानी वो महफिल जिसमें होते हैं वो सदाबहार नगमे जो अमर हो गए और वो सदाबहार कहानियां जो हमारे दिल में बस गई। तो आइए आज के सफर का आगाज करते हैं एक बेहद खूबसूरत नगमे के साथ। साल था 1971 का और उसमें एक फिल्म आई थी जो सुपरहिट थी जिसका नाम था आप आए बहार आई। इसमें एक ऐसा नगमा था जो सच्चे प्यार की एक बेहद खूबसूरत दास्तान है। यह मैं बात कर रहा हूं हम सबके पसंदीदा सदाबहार गीत मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। आनंद बख्शी साहब के लिखे प्यारे बोल और लक्ष्मीकांत प्यारे लाल साहब का अनोखा संगीत आज भी उतना ही ताजा लगता है जब पहले ये फिल्म आई थी और उस वक्त लोगों ने जितना पसंद किया था।